फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र

पार्क का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने

0: की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की लय पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगल प्रभात की करते हैं शुरुआत मातृभूमि के नमन से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

भाई हरनाम सिंह जी के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। कार्यक्रम वंतना के अंत में सुनिए फिल्म धूप छांव से ये भजन, स्वर मन्ना डे का है।

0: मन्ना डे के गाए इस भजन के साथ ही वंदना अब संपन्न हुई। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए अब करते हैं विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन में। आज के चिंतन में आलेख और वाचन केशरी चंद प्रकाश का है।
1: एक युवक ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। एक व्यापारी ने शेयर के धंधे में भारी नुकसान होने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक पत्नी ने ससुराल पक्ष व पति से अनबन होने के कारण अग्नि स्नान कर अपने जीवन का अंत कर लिया। एक पुत्र ने पिता की सही समझदारी वालों को बातों को स्वीकार न कर अलग होने का विचार बना लिया। एक छात्र ने परीक्षा में असफल होने के कारण नदी में छलांग लगा ली। एक उच्च ऑफिसर ने घोटाला किया और उसका पर्दाफाश होने पर

0: नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खाकर चिर निद्रा में लीन हो गए। एक युगल प्रेमी ने विवाह की स्वीकृति न मिलने पर घर से पलायन कर लिया। आए दिन इस तरह की खबरें हमें पढ़ने सुनने को प्रतिदिन मिलती रहती है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यदि हम चिंतन करके देखें तो पाएंगे कि वे सभी हीन भावना के शिकार हुए। वे इस विषय में चिंतन नहीं कर पाए, जीवन से हताश हो गए और न करने वाले अशोभनीय कृत्य कर बैठे। उनकी इस स्थिति में सही विचार करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। हीन भावना उनमें हताशा, मानसिक दुर्बलता को जन्म देती है और उससे मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत प्रभावित होती है। वे सही निर्णय नहीं कर पाते और जल्दबाजी में उल्टे मार्ग पर बढ़ जाते हैं। कैसे उबरें हीन भावना से? हीन भावना से उबरने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करने का। दूसरा, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। और तीसरा, प्रभु के प्रति श्रद्धा, विश्वास जागृत करना। जब तक हमारा आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, हम सकारात्मक सोच नहीं कर पा सकेंगे और उसके बिना प्रभु के प्रति श्रद्धा भी जागृत नहीं होगी। प्रभु के नाम स्मरण का बहुत महत्व है, उससे हमारा आत्मविश्वास दृढ़ बनेगा और जो हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों की प्रस्फुटति करेगा। इस प्रयास से हम हीन भावना से उबरकर अपनी जीवन नैया को सही दिशा में ले जाने में अवश्य सफल होंगे। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसमें कमी न हो। हो सकता है एक बार में सफलता न भी मिले, मगर प्रयास करते रहिए, वह नकारात्मक सोच मत बनाइए। सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप ने जंगलों में भटककर कितने कष्ट उठाए, मगर मन में हीन भावना न आने दी और पुरुषार्थ कर विजय प्राप्त की। जॉर्ज मूलर एक अनाथाश्रम का संचालन करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों अनाथ बच्चे रहते थे। बड़ी धनाभाव के कारण बड़ी मुश्किल से वे अनाथाश्रम को चला पा रहे थे। एक बार आश्रम के मैनेजर ने आकर उनसे कहा, आज तो रसोई बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, सब हो जाएगा। 10 बजे आकर पुनः कहा, भोजन का समय हो गया है, क्या करूं? उन्होंने कहा, घंटी बजा दो, सब बच्चों को बिठा दो, व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा ही किया, सभी बच्चे आकर बैठ गए। इतने में आश्रम के दरवाजे पर 2 कारें आकर रुकी और ढेर सारा खाने का सामान लाकर मैनेजर को दिया। मैनेजर आश्चर्यचकित रह गया। आने वाले सज्जनों ने बताया, उनके यहाँ आज प्रीति भोज था जो किसी कारणवश स्थगित हो गया, तो हमें अचानक ही जॉर्ज मूलर की यह ख्याल आया और यह खाना यहाँ के बच्चों के लिए लाए हैं। जॉर्ज मूलर इतनी विषम परिस्थिति में भी हताश न हुए और न हीन भावना लाए। एक व्यक्ति का एक पांव कट गया दुर्घटना में। वह हीन भावना में जीने लगा और भगवान को कोसता रहता था। एक बार वह एक इमारत में लिफ्ट में जा रहा था तो देखा कि उसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसके दोनों पांव नहीं थे, फिर भी वह मस्ती में गुनगुना रहा था और भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। उसको देखकर एक पांव वाला व्यक्ति भी सीख पा गया कि हर परिस्थिति में मैं मस्त रहूं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में भी इस युग में एक जैन साध्वी ने परवाह नहीं की और तन में व्याधि मगर मन में समाधि का उदाहरण जनता के सामने रखा। हीन भावना से उबरने के माइलस्टोन, हमेशा परमात्मा के नाम का स्मरण रखें, अपनी आत्मा के मूल रूप का ध्यान रखें, कुछ देर शाब्दिक व वैचारिक मौन, मन में सभी के प्रति मैत्री भाव, गुस्से से बचें और सदैव प्रसन्न रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आलेख और वाचन केशरी चंद्र प्रकाश का था। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर सुरेश वाडेकर का है, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्रीराम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था सुरेश वाडेकर का। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं जानकारी हमारी इस सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 6:50 पर गूंजेंगे कुछ सिने जगत के गुजरे दौर के तराने। कार्यक्रम होगा सदाबहार फिल्मी गीत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। हमारे दैनिक मनोरंजक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का समय होगा सुबह 7:20। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार आप सुन सकेंगे सुबह 8:00 से। सुबह 8:15 पर आप लुत्फ उठा सकेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम महिला जगत का समय होगा सुबह 8:30। सुबह 9:00 से आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय होगा सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। इस कार्यक्रम में आपसे फोन पर बात की है हमारी साथी सीमा खोबरागड़े ने। सुबह 11:00 से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम 5:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का समय होगा शाम 6:00। 6:30 से आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा शाम 7:05 और 7:10 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:21 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का समय होगा शाम 7:30। रात 8:00 आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की का समय होगा रात 8:15। 8:30 से आप सुन सकेंगे पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा 8:45। रात 9:00 आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:15 से और रात 9:30 से रात 11:00 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब चलते हैं सिने जगत के गुजरे दौर में और सुनते हैं चंद सदाबहार फिल्मी गीत। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है राजा और रंक।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना प्रेम पर्वत फिल्म का गीत, रचना जानिसार की थी और संगीत जयदेव का था। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है खामोशी, रचना हेमंत कुमार की है, माफ़ कीजिए गुलजार की रचना को संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए फिल्म कभी कभी से। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, संगीत दिया है खयाम ने और स्वर मुकेश का है।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म का गीत, बोल साहिर लुधियानवी के थे, संगीत दिया था खयाम ने। और मुकेश के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 बस होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।

0: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
2: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 70

0: करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव के तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
2: नमस्कार बालाघाट। नमस्कार।

खूबसूरत सी इस सुबह में मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभिवादन स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त संगीता का। तो श्रोता साथियों नमस्कार, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज है मदर्स डे। वैसे तो माँ का कोई एक दिन नहीं, हमारे जीवन में हर दिन माँ का है, क्योंकि बिना माँ के शायद जीवन ही नहीं। दोस्तों माँ वो है जो बच्चे के जन्म से पहले भी उससे बातें करती है। वो माँ है जो जानती है कि शिशु बातचीत नहीं कर सकेंगे, फिर भी हर आने वाले की खबर, उससे शिशु के रिश्ते का नाम, मौसम का हाल, पापा दीदी भैया सबसे मेल बताती रहती है। शिशु के मन का भी कद बढ़ता रहता है, वो ये ख्याल रखती है।

नन्हे हाथों को जुड़वाकर पहला अभिवादन वो करवाती है। पहली दुआ में उसके बोल होते हैं, चंदा मामा है और कागज में सरस्वती माँ ही बताती है। पग भरना उसी के दम पर हो पाता है और सुकून की नींद है उसी की गोद की मोहताज। मित्रों, सबको माँ सिखाती है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो माँ के पास ही छूट जाता है। जैसे पल्लू के किनारे बंधी कोई छोटी सी पोटली जो बिना गौर किए देखी नहीं जा सके। उस नन्ही सी पोटली में जहाँ भर की खुशियाँ समाई हैं। दुनिया जीत लेने की कुव्वत जिसने आपको सिखाई, उस जैसा कोई दूसरा आपको क्यों नहीं मिला, इसका राज छिपा है उस पोटली में। कस्तूरी सी जो बच्चों में समाई है, उसे ढूंढा नहीं महसूस किया जा सकता है, वो माँ है। मित्रों, सबको जन्म माँ से मिला है, पर माँ से कौन मिला है? हैप्पी मदर्स डे।

दोस्तों, जीवन में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम अलग अलग तरह से कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग पूरी जी जान लगा देते हैं कोशिश करने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते और सोचते हैं कि उसी में रहकर उन्हें सफलता मिल जाए। पर ये याद रखिए साथियों, अगर आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है, बड़ी मंजिल हासिल करनी है, तो आपको सफलता पाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, क्योंकि दूर से बैठकर देखने से हमें मंजिल नहीं मिलती, उस तक पहुंचने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। और यही कहता है हमारा आज का विचार भी। दोस्तों, हमारा आज का विचार है, किनारों पर बैठकर लहरें गिनने वालों को कुछ नहीं मिलता, खजाना उनका होता है जो समंदर की गहराई से लड़ते हैं। वाकई साथियों, किनारे पर बैठकर समंदर की गहराई नहीं नापी जाती, सफलता कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी है। और ये बात बिल्कुल सही है, विकास और सफलता का असली मज़ा और चुनौतियां हमारे सुरक्षित दायरे के बाहर हैं, जहां बदलाव को अपनाना और नई चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है। जोखिम लेने और असुविधा का सामना करने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो साथियों, उठिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और हासिल कीजिए एक नई मंजिल को, क्योंकि आप हर मैदान को फतह कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है, आप में इतना आत्मविश्वास है।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियाँ और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, आज साल के पांचवें महीने का दसवां दिन है और आज का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। आज की तारीख में कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास के पन्नों पर। साथ ही आज की तारीख में कई महान हस्तियों का जन्म हुआ और साथ ही बहुत सी हस्तियां आज की तारीख में इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनमें शामिल हैं भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी, जो 1983 में आज ही की तारीख में इस दुनिया से रुखसत हुए। प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा 2022 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन हुआ आज ही की तारीख में सन 2002 में। अब चलते हैं आज के इतिहास की ओर। तो आज यानी 10 मई 1824 में लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया। सन 1857 में भारत का प्रसिद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन प्रारंभ हुआ। सन 1994 में नेल्सन मंडेला लोकतांत्रिक चुनावों के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। 2001 में भारत और तजाकिस्तान ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। आज ही की तारीख में इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर और नासा के प्रशासक माइकल गिफिन ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के चंद्रयान 1 पर दो अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण लगाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। श्रोता साथियों, इतिहास की घटनाओं में अभी और भी हैं घटनाएं बाकी, लेकिन पहले बारी है इस खूबसूरत से गीत की।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आइए श्रोता साथियों, इतिहास के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज जन्मी हस्तियों के बारे में। 10 मई 1986 को जन्म हुआ भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा का। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म हुआ 1929 में। भारत की गुप्तचर संस्था रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ 1918 में। 1909 में जन्मे बीएस केसवन भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी फिल्मों और बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म हुआ 1905 में। भारतीय सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ 1980 में। और श्रोताओं, आज जो हमारी जन्मी हस्तियां हैं उनके साथ साथ हमारे जो भी श्रोता साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज जिनका भी जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, बात हो रही है जन्मदिन की, तो जन्म देती है हमें माँ। और आज यानी 10 मई को हम मना रहे हैं मदर्स डे। साथियों, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, वो जो सिखाती है बच्चे सीखते हैं। पर माँ से सीखने में कभी कभी हम चूक जाते हैं। बेटियाँ तो माँ बनने पर उनके अक्स में ढल जाती हैं, पर बेटे वे केवल ढूंढते रहते हैं माँ को, उस जादू को जो माँ की बातों में था, उनके हाथों में था, उनके सलीके में था। उनकी रसोई अलग महकती थी। साथियों, भटकना छोड़कर एक बार माँ की छाँव में बैठो, आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। कहते हैं ना, जब कोई राह मुश्किल लगी, माँ की ममता हर दर्द पे भारी लगी। वो थाम लेती है बिना कुछ कहे, माँ की दुआ सबसे प्यारी लगी। एक बार फिर हमारे सभी सुधी श्रोता साथियों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे आकर

श्रोता साथियों, हमारा कार्यक्रम हमारे जो भी सुधीर श्रोता सुनते हैं उनमें एक बड़ा वर्ग हमारे युवा श्रोता साथियों का भी है, जिन्हें इंतज़ार होता है हमारे रोज की रोज़गार सूचना का। तो चलिए जानते हैं आज की रोज़गार सूचना। संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के कुल 1200 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 मई 2026। पदों से संबंधित, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे श्रोता साथी वेबसाइट www.esb.mp.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों, हमारी ये रोज़गार सूचना जो हमने आप तक पहुंचाई है उससे आपको लाभ मिलेगा, आप अच्छी तैयारी करेंगे और एक अच्छे पद पर चयनित होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों को कामयाब होते देखना हर माता पिता का सपना होता है और साथ ही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी होती है।

0: वाकई साथियों, माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र होता है। एक माँ हर पल अपने बच्चे का ख्याल रखती है, हर मुसीबत में अपने बच्चे के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है, और इसमें उनका पूरी तरह से साथ निभाते हैं हमारे पिता। वाकई साथियों, माता पिता की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, और इसके लिए कोई एक दिन विशेष नहीं है बल्कि हर दिन खास हैं। तो श्रोता साथियों, इसी के साथ अब अगर हम घड़ी की तरफ देखें तो घड़ी इशारा कर रही है कि अब हम अपने बातचीत के अंक को यहीं समेटें। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें मिला प्रदीप बिसेन और मुकेश कुमार कोष्टा का। कार्यक्रम में प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की, और कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो दोस्त संगीता। तो अब हमें अनुमति दें अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की, और स्वीकारें हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के

0: गमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के

0: आकाशवाणी न्यूज हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी

0: के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा

0: कारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब लुत्फ उठाइए सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह के गाए चंद गैर फिल्मी गीत।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के गाए चंद गैर फिल्मी गीत।

जगजीत सिंह के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

प्यारी सखियों, श्रोताओं, सुप्रभात, सादर सप्रेम नमस्कार आपके रेडियो संगिनी शालू गांधी की ओर से आप सभी को। सखियों, आज का दिन नहीं है कोई आम, ये दिन तो खास समर्पित है माँ के नाम। तो आज मातृ दिवस की हम तमाम श्रोताओं को, सभी माताओं को ढेरों शुभकामनाएं और अनंत अनंत बधाइयां प्रेषित करते हैं। देश और दुनिया भर की सभी अतुलनीय अद्वितीय माओं के ममता, त्याग, करुणा, समर्पण भाव के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें हम सादर नमन और बारंबार वंदन करते हैं। नतमस्तक है हम सभी माओं के प्रति। साथ ही हमारी जननी जन्मभूमि भारत माँ और धरती माँ को भी हम सादर नमन करते हुए करते हैं कार्यक्रम महिला जगत की शुरू। मई के दूसरे रविवार को सम्मान पूर्वक मातृ दिवस मना रहे हैं। माँ शब्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, असीमित क्षमताओं से भरा ये शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो आज मातृ दिवस विशेष पर अपनी स्वरचित पंक्तियां आपसे कहना चाहूंगी कि माँ शब्द में ही समाहित संपूर्ण सृष्टि का सार, माँ शब्द में ही समाहित

उन सृष्टि का सार हम में नव प्राण नव चेतना का करती माँ संचार, ममतामयी करुणामयी माँ देती है सदा दुआएं, ढाल बनकर हर लेती वो सारी विपदाएं, ढाल बनकर हर लेती वो सारी विपदाएं, हर रूप में अपने स्नेहिल छाँव तले हमें दुड़राती पुचकारती हैं, हमारे दिल की बन धड़कन हमारा जीवन संवारती है, हमारे दिल की बन धड़कन हमारा जीवन संवारती है, हम सबका आधार है माँ, हम सबका आधार है माँ, भावनाओं का अंबार है माँ, संस्कारों से सजोती त्याग की प्रतिमूर्ति बन जीवन हमारा सुधारती है, अपने निस्वार्थ प्रेम से कर सिंचित जीने की नई दिशा दिखाती हर पल साथ निभाती है, खुद गीले में रहकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद गीले में रहकर हमें सूखे में सुलाती है, अपने कई रातों की नींद माँ हम पर लुटाती है, हर पल हमारी चिंता में ये घुलती जाती है, हर पल हमारी चिंता में ये घुलती जाती है, खुद रहकर ये भूखे पेट खाना हमें खिलाती है, माँ की महिमा का करूँ क्या बखान, माँ की महिमा का करूँ क्या बखान, आँख मेरी भर आती है, सच में माँ तो आखिर माँ होती हैं, माँ तो आखिर माँ होती हैं, माँ जैसी इस दुनिया में कोई भला कहाँ होती हैं, माँ जैसी इस दुनिया में कोई भला कहाँ होती हैं, माँ की ममता का नहीं है कोई मोल, माँ तो दुनिया में है अनुपम अनमोल, माँ तो दुनिया में है अनुपम अनमोल।

0: सखियों, वाकई माँ की महिमा को हम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं, है ना? वैसे देखा जाए तो हर दिन माँ का है। माँ है तो जीवन है, और अगर पास नहीं है तो उनकी सुखद यादें ही जीवन को जीवंत बनाए रखती हैं। हर जगह उनके आंचल का साया, उनके हाथों की महक दिखाई देती है। सखियों, आपकी माँ आपके साथ में है तो उन्हें भरपूर आदर सत्कार दें, उन्हें वो सम्मान दें, उन्हें अपना समय दें जिनकी वो हकदार हैं। माँ देखिए अपने से तो कुछ नहीं मांगेंगी, लेकिन हमें उनके मनोभावों को समझना होगा, है ना? देखिए, माँ की नज़रों में तो हम हमेशा बच्चे बने रहेंगे, और जब कभी भी हम मुश्किल में फंसते हैं तो सबसे पहले माँ याद आती है। और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरी माँ है, और जब कभी भी मैं थोड़ी परेशान होती हूँ ना किसी भी बात को लेकर, तो तुरंत माँ से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। और ऐसे में माँ के अनुभव और उनके एक एक शब्द जैसे मेरे लिए मरहम का काम करते हैं, और वो मुझे समझाती रहती हैं, ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, बस वर्तमान में जीना सीख और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चल। और हमेशा बोलती हैं कि हमेशा तुम ऊर्जावान और सक्रिय बना रखो, तो उन्हीं की बातों का मैं अमल भी करती हूँ। सच में सखियों, माँ जीवन की वो गुरु हैं जो हमारे आंखों में पलते हर स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने माता पिता से हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। माँ हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाती हैं जिससे बच्चे सफलता के नए आयाम हासिल कर सकें। तो ऐसे ही माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ती हुई एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नागालैंड भ्रमण हेतु चयनित छात्रा दीपिका चौहान से टेलीफोनिक बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, और साथ ही हम आपको मातृ दिवस विशेष पर प्रबुद्ध जनों के विचार और बधाई शुभकामनाएं संदेश भी सुनाएंगे। तो पहले मिलते हैं ग्राम अमेड़ा के पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल की चयनित छात्रा दीपिका चौधरी से। श्रोताओं, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस अभियान की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती के उपलक्ष में की गई, और ये निरंतर चलने वाला एक ऐसा अभियान है जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाषाई समझ और भावात्मक एकता को बढ़ावा देकर देश की विविधता में एकता को मजबूत करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत चयनित छात्र छात्राओं को दूसरे राज्यों का दौरा करने, वहां की विरासत, संस्कृति, खान पान, नृत्य वगैरह को समझने और महसूस करने का मौका दिया जाता है। और इसी अभियान के तहत अभी पिछले माह में ही 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अपने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से 2 बच्चों का चयन नागालैंड राज्य के एजुकेशनल टूर के लिए किया गया, तो उनमें से ही बालाघाट जिले के ग्राम बगदरा की एक चयनित छात्रा दीपिका चौधरी से हमने टेलीफोन के जरिए संपर्क साधा। तो सुनवाते हैं ये बातचीत। दीपिका, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को मदर्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ।
0: और दीपिका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपिका, अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
1: मेरा नाम दीपिका चौधरी है, मैं ग्राम बगदरा से पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रही। मैंने अभी 12th पास किया है अमेड़ा स्कूल से ही। मेरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत नागालैंड भ्रमण के लिए चयन हुआ था, जिसमें टोटल 13 जिलों के बच्चों का चयन हुआ।

0: इसमें मुझे अलग अलग जिलों से अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, और जिसमें एक हमारे बालाघाट जिले से मैं और भानेगांव से 11th क्लास से एक लड़का मेरे साथ था।
1: अच्छा, तो सर्वप्रथम आपको ढेरों बधाइयाँ हम देंगे इस एजुकेशनल टूर पर चयनित होने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो दीपिका, किस आधार पर आप नागालैंड ट्रिप के लिए, नागालैंड भ्रमण के लिए चयनित हुई?
0: नागालैंड भ्रमण हेतु मेरा भाषण प्रतियोगिता से चयन हुआ था।
1: अच्छा, तो आप वहाँ कब पहुँची?
0: चूंकि यह यात्रा 7 दिन की थी, यात्रा का रूटीन हमारा सबसे पहले बालाघाट से भोपाल, भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से फिर नागालैंड जाना था। हर जगह हमें जाकर वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सभ्यता को जानना था।
1: अच्छा, तो दीपिका, किस चीज़ ने आपको वहाँ प्रभावित किया और क्या कुछ सीखने को मिला आपको नागालैंड के लोगों से?
0: चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, मुझे नागालैंड की संस्कृति बहुत ही विशिष्ट और अत्यधिक प्रभावशाली लगी। वहाँ के लोग वहाँ की परंपराओं को बहुत मानते थे, और वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड डांस अलग ही होता है। खान पान से रिलेटेड बातें पता चली, और वहाँ के त्यौहार जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है।
1: अच्छा, तो कैसा लगा आपको?
0: वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, वहां का कल्चर बहुत पसंद आया, वहां पर नेचुरल ब्यूटी ज्यादा प्रसिद्ध रही, मुझे वहां जाकर बहुत ही अच्छा लगा।
1: अच्छा,
0: नागालैंड में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, हर एक जगह पर डस्टबिन रखे हुए थे। मुझे वहां की स्वच्छता और साफ सफाई ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वहाँ की क्लीननेस और नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद आई। वहाँ के लोगों का काइंड बिहेवियर और फ्रेंडली नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर दीमापुर एयरपोर्ट पर लोगों से मिलकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
1: दीपिका, चूंकि आप 12th पास आउट हैं, तो 12th आपने किस सब्जेक्ट से किया था?
0: मैम, मेरा मैथ सब्जेक्ट रहा,
1: अच्छा, और कितने परसेंट अचीव किए?
0: मेरे 80.8% मैथ्स स्ट्रीम से अचीव किया।
1: अच्छा, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, क्या सोचा है?
0: After 12th मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सोचा है।
1: तो आपकी फ्यूचर के लिए हम ढेरों शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपके हर स्वप्न पूरे हों। तो दीपिका, परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है?
0: मैम, मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया।
1: क्या कहना चाहेंगी अपने हम उम्र युवा दोस्तों से और उनके अभिभावकों से?
0: मैं अपने हम उम्र युवा दोस्तों से यही कहना चाहूंगी, जब भी उन्हें कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो आप निश्चिंत ही वहां से कुछ सीख कर आते हैं। मैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगी कि जब भी उन्हें ऐसा कहीं किसी योजना का लाभ मिले तो निश्चिंत ही वह उन्हें जाने की अनुमति दे।
1: तो दीपिका, टेलीफोन के जरिए हमसे जुड़ने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नागालैंड टूर के बारे में, नागालैंड टूर के अनुभव के बारे में अपनी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। मेरी नागालैंड यात्रा को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आकाशवाणी बालाघाट को धन्यवाद करती हूँ।
1: सखियों, ये होती रही टेलीफोनिक बातचीत दीपिका चौधरी से, और आइए अब रुख करते हैं मातृ दिवस के शुभकामना संदेशों और विचारों की ओर।

0: होगी।
1: सखियों, आज मातृ दिवस के सुअवसर पर हमें कुछ बुद्धिजीवियों के विचार और शुभकामना संदेश देश विदेश से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अब हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में सर्वप्रथम हम आपको इस दिवस विशेष पर सिंगापुर से साहित्यकार कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गर्ग के विचार और शुभकामना संदेश सुनवा रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग सिंगापुर से आज मदर्स डे पे आप सभी माताओं को, प्यारी बहनों को, सभी सखियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक माँ करुणा, शक्ति और दया का सागर है और आप सभी को मैं अपनी सुरचित पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। माँ तेरी गोदी में मुझको सुख सागर आधार मिले, निश्चल पावन शुचि गंगा सा अविरल धारा प्यार मिले। माँ ममता की धुरी अनोखी, माँ मुझको

0: जन्नत का आगार मिले, माँ तेरी गोदी में मुझको सुख सागर आधार मिले। निश्चल पावन शुचि गंगा सा अविरल धारा प्यार मिले। तो सभी प्यारी माएँ जो अपना सर्वस्व अपने बच्चों पे लुटा देती हैं, उनको यह दिन बहुत बहुत शुभ हो। उसी प्रकार माँ को भी खूब प्यार मिले, खूब स्नेह मिले और खूब आदर और सम्मान मिले, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत नमस्कार।
1: बालाघाट की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने अपने दिली भावनाओं की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार दी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मातृ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, मातृ दिवस पूर्ण विश्व में मई माह के द्वितीय रविवार को मनाया जाता है। माँ के प्यार, ममता, स्नेह, वात्सल्य, त्याग, करुणा, सहिष्णुता को हम किसी एक दिन में नहीं बांध सकते, न ही माप सकते हैं। पर यह भी सच है कि यह दिन हमें सुअवसर प्रदान करता है माँ के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त करने का, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का, उनके प्रति हमारे सम्मान और स्नेह को प्रकट करने। सारे विश्व ने माँ की महिमा का मान किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, यानी कि जननी और जन्मभूमि दोनों भी स्वर्ग से महान है। माँ घर की धुरी होती है, वह परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का और पोषण का ध्यान रखती है। घर की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वह यह कोशिश करती है कि उसके बच्चों को किसी तरह की कोई कमी महसूस न हो। कई बार इसके लिए वह अपनी इच्छाओं का भी दमन करती है। घर के सभी सदस्यों को सौहार्दता और प्रेम की डोर से बांधने का काम भी करती है। माँ का प्रेम निश्चल होता है, वह कभी भी अपनी संतान से वही समर्पण या वही त्याग या वही प्रेम की अपेक्षा कभी नहीं रखती। उसका आशीष और दुआएं सदैव उसकी संतान के साथ रहते हैं। मुनव्वर राणा जी ने बहुत सही कहा है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। एक बेटी होने के नाते मैं भी अपने माँ के प्रति अपने उद्गार आज व्यक्त करूँगी। मेरी माँ एक सरल, सौम्य और शांत महिला हैं। उनके पास साहित्य रत्न की उपाधि है। उन्हें किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का बहुत शौक है। उन्होंने हमेशा हमें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे कहती थी कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि प्रेम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप जीवन की कई परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका जीवन कर्म और आस्था का सुंदर मेल रहा है। मुझे जो आज आत्मविश्वास है या जीवन के प्रति मेरा जो सकारात्मक रवैया है, उसके लिए मैं अपने माँ और पिता दोनों की ऋणी हूँ। आज मातृ दिवस के अवसर पर हमें अपनी कृतज्ञता और सम्मान न केवल हमें अपनी माँ के प्रति व्यक्त करना है, बल्कि उन सभी महिलाओं के प्रति जिनका हमारे जीवन में मातृतुल्य योगदान रहा है। तो आज के दिन हमें अपनी सासू माँ, अपनी दादी माँ, नानी माँ और जो भी अपनी बुआ, चाची, मौसी, सभी के प्रति यह सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। मेरी सासू माँ डॉक्टर श्रीमती कुसुम लता शुक्ला बालाघाट जिले की प्रथम महिला चिकित्सक हैं। उनकी कर्मठता और कुशलता मेरे लिए सदैव ही प्रेरणा रही है। वे कुशल सर्जन होने के साथ साथ एक बहुत ही कुशल कलाकार रही हैं और हम सारी महिला जगत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। धन्यवाद।
1: इसी क्रम में अपने बालाघाट जिले के मशहूर गीतकार और कवि किशोर छिपेश्वर सागर ने मातृ दिवस पर अपने दिली विचार कुछ यूं रखा।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मैं भारत माँ को प्रणाम करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। माँ के लिए क्या कहें और क्या लिखें कि माँ अपने आप में ही परिपूर्ण है। माँ शब्द से ही आदमी भाव विहोर हो जाता है और हर किसी की माँ हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाती है। मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है, मैं एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझको तो बढ़ना सिखाया है, मेरी माँ ने मुझको तो बढ़ना सिखाया है, मुझे तो नेक राहों पर चलना सिखाया है।

0: जय हिंद, जय भारत।
1: सखियों, अब इसी क्रम में इस दिवस विशेष पर अपने विचारों को लेकर आप हैं दिल्ली से कियान फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी अगम।
2: नमस्कार, मैं आपकी मित्र, आपकी सखी डॉक्टर शालिनी अगम आज मातृ दिवस पर दे रही हूँ सभी माताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता होना ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है हर स्त्री के लिए। हमारे देश में सदियों से माताओं को एक ईश्वर का दर्जा देकर जो सम्मान मिलता है वो अनुकरणीय है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। हमारे देश की हर माँ बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है क्योंकि वो सर्वोपरि रखती है अपने इस रिश्ते को, माँ होने को। वो अपने सारे स्वप्न लुटा देती है अपनी ममता पर, अपनी सारी आशाएं। उसके लिए सर्वप्रथम आता है उसका बच्चा। जो माएँ घर पर रहकर सिर्फ बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान देती हैं वो न जाने कितने ही सपनों को मार लेती हैं, पर जब बच्चा उन्नति करता है, किसी पद पर आसीन होता है, बहुत कुछ पाता है जीवन में, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उस माँ को ही होती है। कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह हर स्थान पर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने हर घर में हर बच्चे को एक माँ दे दी जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हमारे देश की हर माँ एक चिकित्सक भी है, वो एक बहुत अच्छी शेफ भी है, वो सब कुछ कर सकती है। उसके बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस रूप में आकर खड़ी हो जाती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो माँ होने के साथ साथ बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। माँ और बच्चे का जो संबंध है कितना खूबसूरत है, सबसे प्यारा, जिसमें कोई दुराव कोई छुपाव नहीं। माँ के आंचल में छुपकर बच्चा सदैव सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और माँ के गले लगकर को लगता है जीवन का सबसे अधिक सुख उसे मिल गया। माँ लिखें तो सिर्फ एक शब्द है और माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। मैं फिर से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ आप सबको मातृ दिवस पर कि अपनी अपनी माँ का ख्याल रखें। धन्यवाद।
3: माँ मेरी माँ प्यारी माँ।
1: चौथा मातृ दिवस पर अपने शुभकामना संदेश और विचारों को लेकर आप हैं आकाशवाणी बालाघाट के नियमित श्रोता।
4: मैं हूँ प्रदीप केकती, बालाघाट से रहता हूँ। सभी माओं को मेरी शुभकामना है। माँ का क्या बखान करूँ, उनके लिए तो शब्द भी कम है। मेरी माँ से हमेशा मुझे प्रेरणा मिली है। काम ईमानदारी से करो, तकलीफें तो रहती है जीवन में, लेकिन अगर आप करते जाओगे हर दिन अच्छा होता है। अगर आप हर दिन को अच्छा लेके चलोगे तो सुख आएगा ही। सुकून अगर मिलता है तो माँ के आंचल में मिलता है। हालांकि मेरी माँ नहीं है, लेकिन उनकी कमी हर दिन याद आता है। भगवान के पहले माँ की मेरी आंखों के सामने तस्वीर आ जाती, बस उन्हें मैं दिल से याद कर लेता हूँ। आप सभी माताओं को आज मदर डे के उपलक्ष्य में सादर नमन, मेरी हार्दिक शुभकामना है।
1: और इसी दिवस विशेष पर शुभकामना संदेश और विचारों को लेकर हमने बात की एक और श्रोता से।
5: मैं मोती मांद्रे, कदम संस्था का एक सदस्य हूँ। आज मातृ दिवस पर देश की माताओं को मेरा प्रणाम नमन। सबसे पहले मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, फिर जिन्होंने जन्म दिए उस माँ को प्रणाम करता हूँ।

0: मेरी माँ मुझे यही समझाते हैं कि बेटा, काम कोई भी हो, कभी छोटा बड़ा नहीं होता, और अपने काम के प्रति अगर लगाव रखे तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा पड़ जाता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ का आशीर्वाद है। दूर रहने के बाद भी मेरी माता की याद बहुत आती है, तो मैं घर चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ की सिलबट्टे से बनी हुई हाथ की चटनी खाने का और जावारा बाजरा की मोटी वाली रोटी बहुत ही आनंद माँ के हाथों में है, वो कहीं और नहीं है। माँ की आशीर्वाद ही से मैं आज यहाँ तक के पहुँचा हूँ, और सभी माताओं को दिल से नमन करता हूँ। मातृ दिवस पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: सखियों, मातृ दिवस पर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति रखते हुए हमारे साथ है कुछ युवा छात्राएं।
2: मेरा नाम सिया रांगडाले है, मैं देवरी में रहती हूँ। मैं बालाघाट के पीजी कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रहती हूँ। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, मैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। हमारी मम्मी हमें यही सिखाती थी कि दुनिया जितनी अच्छी लगती उतनी अच्छी है ही नहीं, इसलिए संभल के रहना, बाहर रहते तो किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। मम्मी की सीख से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं जब कॉलेज से आती हूँ तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि जब हम कॉलेज से थके-हारे आते हैं तो मम्मी हमारे लिए खाना रखती है, और यहाँ पर खाना रहता नहीं, यहाँ पर जैसे कि वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मैं आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के सभी माताओं को नमन करती हूँ और उन्हें मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: और इसी कड़ी में आप हैं
3: प्रियांशी शरणागत, मैं इन्हीं किरणापुर से हूँ। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि माँ का अर्थ ही होता है सीख, समझ और परख। माता ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही ये सिखाया है कि सबके साथ सभ्यता से व्यवहार करो, कभी डरो मत किसी से, और अच्छी चीज़ों को सीखने की समझ रखो। मेरी माँ अभी बहुत दूर है मुझसे, मेरी बात भी होती है। जैसे मेरे माता पिता हैं, वो मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करती, उनके लिए मैं भी कुछ एडवांटेज उनको भी देना चाहती हूँ अपने तरफ से। माता संस्कार ही नहीं सिखाती, वो हर एक चीज़ सिखाती है, भले ही वो डांट के सिखाए, प्यार से सिखाए, पर बहुत अच्छा लगता है। शाम को उनका डेली फोन आएगा और वो बोलेंगे कि खाना खाया कि नहीं। जो अदर लोग रहते हैं ना, वो नहीं पूछते, जो मम्मी होती है वो सबसे स्पेशली पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है, ये सब कुछ। अदर लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं, पर माँ स्वार्थ से कभी भी नहीं जुड़ती, माँ सर्वोपरि है।
4: तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
1: सखियों, अभी आपने मातृ दिवस के अवसर पर प्रबुद्ध जनों के विचार और शुभकामना संदेशों को सुना। प्रस्तुति थी सहायक निदेशक कार्यक्रम कुंवर विक्रम सिंह की, और अब जाने का समय हो चला है। फिर होगी आपसे मुलाकात। पुनः मातृ दिवस की ढेरों शुभकामनाओं संग स्वीकारें अपनी रेडियो सखी शालू गांधी का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।
1: हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत, अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: जाने कितने

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट, इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमरे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज़।

0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: मिलन को जान

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: क्षेत्रों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले

से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

सूरज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: उमरिया जिले की चिट्ठी, आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकड़कों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से

निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर

0: निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद सीईओ मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के
1: कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत, जिसमें फोन पर आपसे बातचीत की है हमारी साथी सीमा खोबरागड़े ने।

0: एक अरमान दिल में लिए आपका पैगाम हम तक आया है, कुछ अच्छी अच्छी बातें और आपका संदेश लाया है। श्रोताओं, कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त सीमा। अब चलिए शुरू करते हैं ये सुरीला सा सफर। तो ये आ गई है हमारी पहली कॉल।
1: हेलो।
0: हाँ
1: मैम, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत
1: जी
0: जानना चाहेंगे।
1: कार्यक्रम में आप कौन बोल रहे थे?
0: आज इस कार्यक्रम में मैं बोल रही हूँ सीमा, और मैं जानना चाहूंगी कि हमारी बात किन से हो रही है।
1: जी मैं आपका निमित सोदा बोल रहा हूँ, चिखलावान से, प्रकाश सोनी।
0: जी प्रकाश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम आपने कॉल उठाने के लिए, कोशिश करी आपने।
0: जी तो प्रकाश जी, कुछ अपने बारे में बताइए या अपने अपने ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: प्रकाश तो मैडम जी क्या है, दिन में निकलता है, दोपहर में अंधेरा हो जाता है मीडियम।
0: जी
1: मौसम ने इस वक्त क्या है, बहुत करवट बदल दी है, हवा तूफान बारिश।
0: जी
1: दोपहर तक धूप रहती है, एकदम खिली खिली सुबह से।
0: और वैसे तो इस बार ऐसा भी हुआ कि अभी गर्मी अप्रैल माह में भी बहुत ज्यादा जो मौसम है वो बहुत गर्म हो गया था, यानी कहा जाए तो सूर्य देव का जो प्रकाश है वो कुछ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ने करवट बदली है और मौसम थोड़ा ठंडा सा हुआ है।
1: जी जी जी
0: जी। तो प्रकाश जी, आज कौन सा गीत फरमाइश बनने वाला है इस कार्यक्रम में?
1: हमारे फरमाइश में है कुछ पुराने लोग है, कहना चाहिए विनय कुमार तुरकर के वारा से, और हमारे बच्चे प्रिंस कुरवे, खुशी कुरवे, ममता कुरवे, इनकी फरमाइश है मैडम जी, धूप में ना निकला करो रूप की रानी वाला एक गीत। और कहना चाहिए मैं आपका बहुत पुराना होता हूँ, कहना चाहिए आकाशवाणी से जुड़ा हुआ।
0: जी तो वैसे तो जो कभी भी क्या होता है कि जैसे जैसे रेडियो है, रेडियो और श्रोता, ये इनके बीच का जो संबंध है आपस में इतना मजबूत संबंध है, और जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ाने वाले बढ़ते हैं, ये संबंध और प्रगाढ़ होता जाता है। जी
1: अभी मैं कहना कि 2 महीना के बाद में मतलब आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: ताकि क्या है दूसरे जो नए श्रोता है उनको समय मिलना चाहिए।
0: ये तो आपने बहुत सही बात कही,
1: ये हमारी एक राय है कहना चाहिए पुराने श्रोताओं के लिए।
0: नहीं तो उसमें होता भी है ना ये कि प्रकाश जी क्या होता है कि कुछ कुछ श्रोताओं के जो फोन है वो लग जाते हैं, और कुछ वो निरंतर प्रयास करने के बाद में भी सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे

0: उन श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो एक खास अंतराल के बाद फोन करते हैं और दूसरे श्रोताओं को आगे आने का मौका देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रकाश जी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे, और हम पहुंचा रहे हैं।
1: इसके पहले आपसे भी मतलब कई बार बात हो चुकी है
0: जी,
1: तो आप हमारी जो फरमाइश है इस फरमाइश को पेश करिए और हमारे श्रोताओं को, और आप भी सुनिएगा
0: जी। जरूर, तो बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी बात करके। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो बालाघाट आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी बालाघाट, कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
0: हाँ जी, मैं बालाघाट से मनोज कुमार बोल रहा हूँ।
1: हाँ मनोज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
0: जी धन्यवाद। मुझे अपने पिता के लिए गाना सुनना है, पिता से है नाम तेरा।
1: जी तो ये बहुत ही सुंदर सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये गीत है आपके रेडियो सेट तक पहुंचाए। तो मनोज जी, और गीत संगीत सुनने के अलावा आप क्या शौक रखते हैं?
0: वैसे तो गीत संगीत सुनने के अलावा मुझे घूमना और

0: अलग अलग स्थानों पर जाना, दर्शनीय स्थल के दर्शन करना, ये सभी चीजें अच्छी लगती है। और अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो आसपास के प्रकृति से जुड़े रहना ज्यादा पसंद आता है
1: जी। और वैसे भी अभी जो इन दिनों है, जो मौसम भी है, जो बहुत खुशगवार सा है और छुट्टियों का समय है, तो ऐसे समय में तो वाकई दिल करता है कि कहीं जाएं, घूम कर आएं, और उसका एक अलग ही मजा होता है। और साथ में अगर परिवार वाले हों तो फिर मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: कुछ लिखने का भी शौक रखते हैं आप?
0: हाँ, मैं कभी कभी लिखता हूँ, कविताएं लिखने का शौक मुझे रहा है बचपन से। तो मैं सामान्यतः प्रकृति पर और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ रचनाएं लिखता था।
1: तो मनोज जी, बात करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा। और
0: बिल्कुल धन्यवाद।
1: वैसे तो किसी भी मनुष्य को अपने शौक जो है वो हमेशा जीवित रखने चाहिए और हमेशा अपने शौक जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमें ये मानव जीवन मिलता है और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इसमें हर रंग भरें।
0: जी धन्यवाद।
1: जी।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते, जानना चाहेंगे किनसे बात हो रही है?
2: मैं विजय कुमार भूरे बोल रहा हूँ, ग्राम वरुड़ तहसील कटंगी से।
1: जी विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत में।
2: जी मैम।
1: तो विजय जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: मैं ना मैडम माँ के ऊपर कोई भी गीत सुना दीजिए।
1: जी तो विजय जी, अब अपने बारे में कुछ बताइए।
2: जी मैम, मैं गेस्ट टीचर हूँ, स्कूल में अतिथि शिक्षक में पढ़ाता हूँ।
1: और गीत संगीत का शौक रखते हैं? रेडियो बालाघाट के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
2: रेडियो तो मैडम हमारे यहाँ पे 2005 से बज रहा है, अभी भी हमारे यहाँ रेडियो है। मैं युवानी कार्यक्रम सुनता हूँ, नमस्कार बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, आपके फोन आपके गीत।
1: को सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम लगता है?
2: सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे वही नमस्कार बालाघाट, युवानी और गुड इवनिंग बालाघाट।
1: जी विजय जी, बहुत ही अच्छा लगा बात करके आपसे।
2: मेरी बेटी का नाम है आराध्या भूरे और पत्नी का नाम है गायत्री भूरे।
1: जी हम पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट तक। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ मैम नमस्ते
1: जी नमस्कार। कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
0: हाँ मैम, मैं ग्राम मुंडा टोला विकासखंड ढौंडी लोहारा जिला बालो छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र साहब बोल रहा हूँ।
1: जी डोमेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी।
1: डोमेंद्र जी बताइए, कैसा है छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल?
0: मौसम का हाल तो छत्तीसगढ़ में खुशनुमा है मैम जी। क्या अब गर्मी पड़ रही थी तो कल जो झमाझम बारिश हो गई, थोड़ी सी ठंडा की राहत मिल रही है सबको।
1: अच्छा, तो गर्मी में जो ये आपने बारिश का मजा लिया तो अच्छा लगा होगा, थोड़ी राहत महसूस की होगी।
0: जी जी।
1: तो डोमेंद्र जी बता दीजिए कि कौन सा एक खास गीत आज इस कार्यक्रम में आप सुनने की फरमाइश लेकर आए हैं?
0: मैम जी, आज के इस कार्यक्रम में मुझे कुर्बान का गीत सुना दीजिएगा। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चले आऊ नदिया किनारे, वाला गीत सुना दीजिएगा मैम जी।
1: जी तो डोमेंद्र जी, बात करके अच्छा लगा आपसे।
0: हम बहुत अच्छा लगा मैम जी आपसे बात करके।
1: तो हम पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गाना, एंजॉय कीजिए।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
0: नमस्कार मैडम,
1: जानना चाहेंगे किन से बात हो पा रही है हमारी?
0: जबलपुर एमपी से अशोक सिंह
1: जी। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद मैडम जी का। कैसी हैं आप? आकाशवाणी टीम अपनी बालाघाट के?
1: मैं अपनी पूरी आकाशवाणी बालाघाट की टीम के साथ में बिल्कुल सकुशल हूं और आशा करती हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे।
0: मैं भी अच्छा हूं, बस मौसम गर्मी का मजा ले रहे हैं, गर्मी थोड़ी राहत है
1: जी।
0: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी
1: जी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा सा गीत है जो आपने चुना है
0: जी।
1: तो पुराने गीत पसंद है अशोक जी आपको या नहीं?
0: जी पुराने गीत ज्यादातर अच्छी के दर्शक के।
1: और ये एक खास समय था जब गीत जो थे वो बहुत ही दिल को छू लेने वाले थे, क्या कहेंगे आप?
0: जी बहुत प्यारा गीत है
1: जी। तो अशोक जी बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे।
0: ये सब आपके लिए और सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो चलिए अब हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर ये आपकी पसंद का गाना। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते मैडम
1: जी, नमस्कार। कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत
0: जी जी जी मैं गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवानपुरम छत्तीसगढ़ के।
1: जी जागेश्वर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत में।
0: जी।
1: क्या करते हैं जागेश्वर जी आप?
0: मेरा कृषि कार्य के काम है। आकाशवाणी के श्रोता हूँ, आकाशवाणी रायपुर, आकाशवाणी रायगढ़, ऐसे बहुत सी जगह से फोन लगाता हूँ।
1: जी, यानी सभी आकाशवाणी केंद्र से आप जुड़े हुए हैं और यूं कहें कि जो मनोरंजन का रस है वो आप हर जगह से लेते हैं।
0: जी,
1: तो ये जो बारिश हुई है ये छत्तीसगढ़ में भी हुई है?
0: हाँ, बारिश तो हमारी कल हुआ है, कल बारिश हो गया भाई।
1: जी,
0: क्या बताएं।
1: तो आप जैसे आपने कहा कि कृषि से आप जुड़े हुए हैं, तो ये इस बार की जो बारिश है वो कृषि के दृष्टिकोण से देखे तो उचित थी या
0: उसमें फायदा भी है ना? मूंग और उरी जो डाला है ना, उसके लिए फायदा है। और रबी फसल दूसरा जैसे धान काट के धान और कई बोए हैं, उसके लिए फायदा है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: नुकसान है
1: जी, और मौसम में तो ठंडक दी ही है इस बारिश ने।
0: मौसम के मिजाज बदल गया है
1: जी,
0: पहले तेज बारिश था, थोड़ा से थोड़ा चेंज हो गया है।
1: जी, तो जागेश्वर जी अब बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको इस कार्यक्रम में।
0: हम ये फिल्म का गाना सुनूंगा और साथ जी भी इस दुनिया में आजकल अपनी जोड़ी, और हमारे मित्र है गुरुआराम साहू जी कन्या दमो से और मलाजखंड डुंगरिया से मुन्ना लाल जी पटेल, सभी के पसंद से हम इस फिल्म के गाना सुना।
1: जी, तो चलिए, मुझे लगता है कि आपने जो अपने दोस्तों की जो फहरिस्त वो बताई है और गीत भी कुछ इसी तरह का सुना है, तो आपकी दोस्ती भी सलामत रहे, इसी बात को हम भी ध्यान में रख के सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम,
0: जी नमस्कार।
1: मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से बोल रहा हूँ मैम, सुरेश कुमार सारथी।
0: जी सुरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और कार्यक्रम का नाम है आपके फोन आपके गीत। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट से।
1: जी मैम जी।
0: तो सुरेश जी, आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: एक ही गीत सुनना चाहता है मैम, प्रेम पुजारी लता मंगेशकर की आवाज में, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: जी
1: इधर गर्मी कैसी है मैम?
0: गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है अभी इन दिनों, क्योंकि थोड़ा मौसम है जो उसने थोड़ा अपना रंग रूप बदला है और थोड़ी नरमी आई है उसमें।
1: जी मैम, जी मैम, इधर भी थोड़ा सा बदलाव है मौसम में। शाम के समय आंधी तूफान के साथ थोड़ा बूंदाबांदी पानी गिर जाता है मैम, तो उनसे गर्मी से थोड़ा सा निजात मिल जाता है।
0: जी तो वैसे तो ये जो मौसम है, ये सभी तरफ जो गर्मी की जो तपिश है वो ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उस मौसम के जो रुख बदला है तो सभी ने थोड़ी राहत महसूस की है।
1: जी जी जी जी
0: जी। तो अब चलिए, अब हम पहुंचाते हैं आपका गीत आपके रेडियो सेट तक। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: गेंदलाल कार्य बोल रहा था जी, टेंगनकला लालबरा से
1: जी। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत, जिसमें आपका स्वागत है।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो शादी विवाह का जो सीजन चल रहा है, इसमें हमें एक गीत सुनना है हमारी प्यारी बिटिया के लिए
1: जी। तो कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
0: फिल्म घर संसार का है, अनुराधा पौडवाल की आवाज में। हाथ सीता का राम को दिया राजा जनक, और देंगे क्या। और सुनाइए आप कैसे हैं
1: जी? मैं पूरे आकाशवाणी परिवार के साथ में बिल्कुल सकुशल हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे।
0: और इस समय में तापमान बहुत बढ़ चुका है
1: जी,
0: लेकिन हमारे गांव में चारों तरफ हरियाली है, रबी की धान की फसल लगी हुई है, और गांव का वातावरण तो बहुत ही सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ होता है
1: जी।
0: अभी आमों का बहुत सीजन चल रहा है, तो पेड़ों में आम देखो लदे हुई है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और शाम को जब खेत में जाओ, मेड़ के ऊपर में हरी हरी घास में बैठो
1: जी,
0: तो मन गदगद हो जाता है
1: जी। आपने जो ये गांव का जो ये चित्रण किया है, इससे हमें अभी ऐसा लगा कि हम गांव की किसी खेत की किसी गली में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और आम की जैसे मीठी मीठी खुशबू आ रही है, ऐसा हमें लगा। तो गेंदलाल जी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट तक। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, मैं बालाघाट से बोल रही हूँ।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का जिसका नाम है आपके फोन आपके गीत।
1: मैं खुशी बोल रही हूँ बालाघाट से।
0: तो खुशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा एक गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: मुझे कृष्ण भगवान का कोई भी अच्छा सा गाना सुना दीजिएगा।
0: तो
1: और मैडम कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल

0: अच्छे होंगे
1: हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, बढ़िया।
0: जी। तो वैसे
1: गर्मी
0: हाँ, गर्मी से तो राहत अभी हमको सबको मिल ही गई है। जो थोड़ा मौसम बहुत, जो तपिश बहुत ज्यादा थी, वो थोड़ी कम हो गई है। तो खुशी जी, और सिर्फ गीत सुनना ही पसंद है? जैसे अभी आपने एक भक्ति गीत की फरमाइश की है, तो कि गाना भी पसंद करती हैं?
1: हाँ जी, गाना बहुत पसंद
0: और आकाशवाणी बालाघाट के
1: है। हाँ
0: कार्यक्रम सुनती हैं?
1: हाँ हाँ आकाशवाणी बालाघाट के कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं,
0: जी
1: सुबह भी जो कार्यक्रम आते हैं सब सुनते हैं।
0: जी तो अच्छा लगा आपसे खुशी जी बात करके। हम पहुंचा रहे हैं आपका ये भक्ति गीत आपके रेडियो सेट तक, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद।

शुदों चलते चलते हम आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला प्रदीप कुमार एड़े और अंकित चाकोले का। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं सीमा खोबरागड़े। तो अब दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम, आपके फ़ोन आपके गीत, जिसमें फ़ोन पर आपसे बातचीत की थी हमारी साथी सीमा खोबरागड़े ने। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं।
1: जी।
0: और अमर जी, कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है,
1: जी
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या
1: क्या देंगे,
0: सुनाएंगे।
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं, वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं।
0: मैं नाम बता रही हूँ अब, और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक
0: तो
1: कहा आपने।
0: आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल।
1: जी
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें।
0: जी जी
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्मों
1: जी,
0: में।
1: लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था।
0: जी,
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं में ये सास बनी थी।
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया।
0: मात्र 59 वर्ष की आयु।
1: जी,
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं।
0: जी,
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था वो।
0: जी हाँ, एक अर्बन नदिया के पार।

0: कह लीजिए।
1: जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बढ़ जाता है कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत
0: जी,
1: चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट
1: स्टार
0: थी,
1: कास्ट थे।
0: जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात्य परिवार की एक
0: मदर
1: कमांडिंग
0: हो,
1: मदर हो,
0: मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ।
1: ग्लैमरस माँ। ये बिल्कुल सही शब्द आपने
0: जी
1: पकड़ा।
0: जी
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: कानपुरी ने धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत बद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना, कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब दीजिए यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार। दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय, कितना मिलता जुलता है ये समय। और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता संवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मजेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखिए इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आधी गीत दिखा सारे गीत तो हमें नजर नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इबारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही हैं कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है। समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है। जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जान

ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है, ये तो बस आनंद का संवाद नहीं हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश से जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है, सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

या है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था, तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता, और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है, दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है, तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के जमाने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी अति घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी। वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट

तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन-टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात है। अपनी एचएमटी के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय

0: देखना भी सिखाता हूँ, क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है?
1: आई बहार आ जाई बहार,

मस्ती से डाले जो यूं झूम उठी, इस मस्त से इनकी आंखें लड़ी, मस्ती से डाले जो यूं झूम।

आज फूलों का बुलबुल के दिया कोने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया कोने को है।

0: बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरि बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं

समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है। समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है भाई। हाँ सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी

प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुर हल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज की

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखी थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में से ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ, और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी

सुबह होती है जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है, बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है, इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण

0: प्रणव,
1: और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी

0: पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के

0: बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: हमें मामा जी करना तुमको पढ़ा मैं नीचे उतरला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सब सच कहना कुछ न छुपाना, हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, फेरो पीछे बतलाऊंगा पहले दो एक बत्ती।

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ।

मोहम्मद रफी का गाया, औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरुड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान।

0: का साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा। ये लड़की नीला
0: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
0: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
0: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
3: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
2: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
3: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
3: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव का मिया अम्बाल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं?

0: मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर।
1: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
0: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माँ जी
1: आओ कंदे स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it. इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावटी नहीं, असली मूछें है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माँ जी
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुँचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे बादशाह को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: गलतियाँ।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म साहिब।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइन भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
0: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे, वहाँ
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डर करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
0: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
0: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: இஸ் வெரி குட் டைரக்டர். பாஸ் அவர் யாராச்சு டூ இன்னொன்று முஜே யஷ் ஜோர் நே கஹா கி பாய் ஆப் மேம் பாஞ்ச் மினட் மில்னே ஆனா சாத்தா ஹூன். மேம் பாலி ஹில் ஷிஃப்ட் ஹோ சுகா தோ தபி உஸ்கோ ஆஃபீஸ் பனா லியா தா மேனே தோ மேனே கஹா பாலி ஹில் பே ஹூன் வஹான் பே ஆயே வஹான் பே தோ கஹனே லகே கி பாய் வோ ஐசா ஹை கி யஷ் ஜி கே பாஸ் மேன் ஜாதா ரஹா தோ ஐசே அபி வைதா ஜி நே கஹா ஹை கி ரமேஷ் கே சாத் மேனே காம் கியா ஹை தோ ஆப் மேரி பிக்சர் கர் லீஜியே. மேனே கஹா பாய் மேன் யஷ் ஜி கி பிக்சர் கைசே கரூன், மே உன்கா சேலா ஹூன் தோ முஜே டைம் தீஜியே, மே யஷ் ஜி சே பாத் கர்தா ஹூன், एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं, उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे, उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: शूटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप याजस में बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जौहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना सी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल

0: रोजगार भी मिल रहा है, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: बोला हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाने अब सब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए। मतलब दिलीप कुमार
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की। कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: और कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार।
1: हाँ दिलीप कुमार की लॉन्च हो रही है।
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: मशाल मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता सर
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया।

0: वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त। तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल टीम से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते। तो सी रॉक बुक किया गया,
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा,
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ इतने जो भी। उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे वो सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा, क्योंकि
1: वाह वाह
0: दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे तो
1: जी,
0: तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी की हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना, या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह, क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो, वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा, सागर यारा किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूँगा पूरा, मुझे क्यों चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए हैं, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की,
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर साहब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।

0: पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर। उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ ओ ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्री देवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटे पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा यह है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बुलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
0: वो
1: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके। और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए,
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि तो जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पर लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को यह कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जब वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है।

0: तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग ओके, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी,
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और प्रसारण आकाशवाणी बालाघाट के स्टूडियो नंबर 1 से। चूंकि शाम के 5 बज चुके हैं, आप सभी को इंतजार होगा अपने पसंदीदा युवा साथियों के प्रोग्राम युवाणी का। तो हम आपको बताते चलें कि आज आपके और हमारे साथ हैं हमारी और आपकी ऊर्जावान युवा साथी अश्विनी वाधवानी। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम युवाणी।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।

आकाशवाणी बालाघाट के स्टूडियो नंबर 1 से आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवाणी, और आज आपके और हमारे साथी, आपकी और हमारी ऊर्जावान युवा साथी अश्विनी वाधवानी। दोस्तों, समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं और आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। सो नाउ हियर वी गो फॉर द नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक यानी कि फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज इस प्रोग्राम में आपने सुने जिन फिल्मों के गीत सुने, वो फिल्में थी कभी कभी, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, एक दूजे के लिए, त्रिशूल और तेरे नाम। आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम, उदित नारायण और अलका याग्निक की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण FM बैंड 101.3 MHz पर। 6 बज चुके हैं। आप सभी को इंतजार होगा अपने मनपसंद, अपने फेवरेट प्रोग्राम का, जिसका नाम है गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: प्रोग्राम गुड इवनिंग बालाघाट। सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को उनकी रेडियो मित्र, रेडियो होस्ट, रेडियो दोस्त रंजन एवले का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? पता है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बस ऐसे ही स्वस्थ और मस्त बने रहिए और बने रहिए आकाशवाणी बालाघाट के साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम गुड इवनिंग बालाघाट, क्योंकि गीत संगीत और बातचीत का सिलसिला रहेगा जारी।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों कहते हैं आज मदर्स डे है, कहते हैं क्या मतलब है आज मदर्स डे है, तो क्या मदर्स के लिए यानी कि माँ के लिए सिर्फ एक दिन, माँ का सिर्फ एक दिन होता है? नहीं हो सकता। माँ का दिन तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन उसके पहली बार इस बात का एहसास होता है कि वो माँ बनने वाली है, तब से लेकर जब तक वो जीवित रहती है तब तक माँ का दिन चलता है। फिर अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मदर्स डे एक दिन का है? लेकिन फिर भी जिन लोगों के लिए लगता है कि मदर्स डे एक दिन का है तो उन सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, इस संदेश और गीत के पहले हम बात कर रहे थे मदर्स डे की। तो क्या मदर्स डे क्या उन माताओं के लिए भी होगा जो वृद्धाश्रम में बैठी हैं? वो भी तो किसी की माँ है और उन्हें भी उनके बच्चों ने ही माँ छोड़े हैं। जरा सोच के देखिएगा उनका मदर्स डे या उनका फादर्स डे कैसा होगा।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी बालाघाट से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग बालाघाट। बने रहिए आकाशवाणी बालाघाट के साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम गुड इवनिंग बालाघाट।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें,
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें, पटाखा एंड पटाखा सरेखा बाईपास रोड बालाघाट,
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: दोस्तों मौसम ने करवट ली है, कभी गर्मी फिर बारिश फिर ठंड, फिर गर्मी फिर बारिश फिर ठंड। ऐसे में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, यानी जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड इवनिंग बालाघाट, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ था मैं आपका रेडियो मित्र, रेडियो होस्ट, रेडियो दोस्त संजय नेवले। इजाजत दीजिए आज के इस प्रोग्राम से।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण आप सun rahe हैं FM band 101.3 MHz पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज के गाए चंद गैर फिल्मी गजलें।

0: launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. The powerful explosion completely destroyed the police post, with several security personnel being reportedly buried under the rubble. In IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 204 runs for Chennai Super Kings at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. In reply, Chennai Super Kings won 165 for 3 in 15 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: पापा, लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, 5000 करोड़ की सौगात मध्य

0: एड्रेस तो मिली हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी दो पहले नंबर के पुरस्कार और बाद को भी 3 पुरस्कार मिले।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
3: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय आईटीआई हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का

शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से कर पेमेंट, डिजिटल पेमेंट जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज बैक टू बैक दो गाने,

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज इस प्रोग्राम में आपने सुने बैक टू बैक दो गाने। फिल्मों के नाम हम आपको बता दें, रामपुर का लक्ष्मण और दूसरा आदमी। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शाम के 7:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम ये करेंगे आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा।

0: अब श्रोताओं 7:30 बज गए हैं और अब हम शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। किसान भाइयों, आज का हमने विषय रखा है जायद की उद्यान की फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है, वो हम तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
0: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सजीव टेलीफोनिंग कार्यक्रम है। आप सीधे हमसे जुड़ते हैं टेलीफोन के माध्यम से। एक बार पुनः हम आपको टेलीफोन नंबर बता दें, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 टेलीफोन नंबर है 2660902। एक और दूसरा नंबर है हमारा 2660903। इन नंबर्स पर आप टेलीफोन लगाएं और सीधे हमसे जुड़ेंगे, हमारे विशेषज्ञ से बात करेंगे। आपसे एक बार जरूर कहेंगे कि आप विषय से संबंधित सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय हम पुनः दोहरा देते हैं, जायद की उद्यानी की फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामिक कार्य। इस समय यानी कि आपको जायद की फसलों में क्या काम करने हैं, खेत में क्या काम करने हैं, और जायद की फसलों जो उद्यानी की फसलें हैं खासतौर से, उनमें पोषक तत्व का किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, ये तमाम चर्चाएँ हम करेंगे। हमारे किसान भाई यदि लाइन पर आते हैं तो उनके सवालों के जवाब भी डॉक्टर विजय अग्रवाल जी देंगे। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय रखा हमने, आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इस समय खेतों में क्या काम चल रहा है।
2: देखिए, अभी इस समय अगर जायद की बात करते हैं तो इस समय बहुत सारी सब्जियां हैं जो खेतों में लगी हुई हैं, जो विशेषकर अपन देखते हैं कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि कद्दू हुआ, लौकी, गिलकी, तोरई, करेला, इसके अलावा खरबूज और तरबूज भी बड़े पैमाने पर इस समय खेतों में लगे हैं। इसके अलावा भिंडी की फसल भी लगी हुई है, तो इस समय उनमें फलन भी आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी तुड़ाई होकर बाजार में भी जा रही है, तो इस समय उसमें बहुत सारे देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे जो उद्यानी की फसलों के अंतर्गत जो बगीचे हैं इस समय, जो हमने पहले लगाए थे, उनमें भी कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है। और
0: डॉक्टर साहब, हम चर्चा जारी रखेंगे। किसान भाई का टेलीफोन हम लेते हैं।
2: जी
0: नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। आप नाम बताएं अपना।
3: जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार
0: जी, आप शुभ नाम बता दें, स्थान भी बता दें हमें।
3: जी, गौर जामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: हाँ कटारे जी, आप सवाल करें।
3: जी सर, से मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल मैं जानना चाह रहा था कि जो अभी उद्यान की फसलें लगी हुई हैं किसान भाइयों की, तो उसमें ये जानना चाह रहे थे कि जो जैविक खाद है उनमें कौन कौन सी खादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो आजकल दुकान पर भी मिलते हैं, बाल्टी वगैरह आती हैं जो। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे सब्जियां हैं तो दोपहर में पानी देने से कोई नुकसान तो नहीं है, जैसे गोभी या फिर इसमें भिंडी के बारे में जानना चाह रहे थे। गोभी तो अभी नहीं लगी है, गलती से बोल दिया, भिंडी और तरबूज लगा हुआ है।
2: देखिए, पहली चीज जो है आपने बोली है कि अभी इस समय पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं दोपहर के समय पानी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे पौधों पे नुकसान होगा। आपको पानी देने का सबसे अच्छा समय है कि आप सुबह सुबह आप पानी दीजिए और 8-10 बजे तक दे दीजिए पानी। इसके अलावा बाद में देना है तो शाम को 6 बजे के बाद पानी देना ज़्यादा उचित रहता है। दोपहर में पानी देने से पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है। अब दूसरी बात आपने बोली है कि आप इसमें जैविक पोषण प्रबंधन करना चाहते हैं, तो सब्जियों में सामान्यतः इस समय जो सब्जियां लगी हैं उसमें कई सारी जैविक चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जीवाणु खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसमें। इसके अलावा अपन चूंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और फॉस्फेट वाली खाद भी देते हैं, तो उसके लिए फॉस्फेट सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSB होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीवामृत जैसी जो होती हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, उनको भी प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं।
0: जी, तो विपिन कटारे जी, बहुत बहुत

0: धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुभ नाम बताएं अपना।
1: जी नमस्कार
0: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला, शिमला से राकेश जी बताएं क्या समस्या अपनी।
1: जी जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम प्राकृतिक खेती किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर सकते, खासकर जो है शिमला मिर्च और टमाटर।
2: देखिए, आप है ना प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी है ना ये तो गाय गोबर इन पर प्राकृतिक चीज़ों पर आधारित रहती है, तो इन सबसे पहले अपनी खेत में आपको जो भी आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं पहले तो सबसे पहले उनका प्रयोग आपको खेत में बंद करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उससे उसका ही पोषण तत्व जैसे जीवामृत वगैरह, घनजीमा अमृत, उसका आपका प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा जो इसमें कीटनाशक या बीमारियों के लिए जो दवाओं का प्रयोग होता है वो भी आपको जैविक पद्धति से ही तैयार करनी पड़ेगी प्राकृतिक रूप में, जैसे नीमास्त्र वगैरह हुआ, पत्तियों का घोल हुआ, पांच पत्ती घोल हुआ, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक का आपको प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो रासायनिक पोषक तत्व हैं जैसे खाद हैं उनका प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है।
0: तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिमला हिमाचल प्रदेश से टेलीफोन लगाया और जो आपकी जिज्ञासा थी उसका समाधान डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने कर दिया है। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम, सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है इस समय, हेलो ग्राम सभा।
3: जी सर नमस्कार
0: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
3: मैं मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जिला कोना मध्य प्रदेश से।
0: धाकड़ जी बताएं क्या समस्या है अपनी।
3: मैं समस्या ये है सर जी, ये मिर्ची है कुछ पेड़ मिर्ची की वो बताए, उसमें बैगन भी है और टमाटर भी है।
0: हाँ हाँ,
3: उसमें मतलब कुकड़ा है।
0: कुकड़ा, ये कुकड़ा रोग की कुछ वजह होगी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको।
2: देखिए अभी इस समय जो है सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में टमाटर जैसी फसलें जो होती हैं वो अभी उपयुक्त नहीं होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां लगती है। मिर्ची में जो आपने बोला कुकड़ा लगने का, वो कुकड़ा लगने की समस्या आती है और ये एक वायरस जनित रोग होता है। और आप देखोगे पौधे के पास जाओगे, पत्तियों को हिलाओगे, पौधे को हिलाओगे तो सफ़ेद मक्खियाँ उसमें उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो उसका अपन को नियंत्रण करना है जिससे कुकड़े का जो समस्या है या जो चूड़ा मुड़ा जो बीमारी लग रही है उस पर नियंत्रण हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में नीम के तेल का स्प्रे करें, 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा रासायनिक उपचार के रूप में इमीडा क्लोप्रिड नाम की दवा बाजार में मिलती है, इसकी भी 0.3 ml मात्रा 1 liter पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, इससे कुकड़े पर नियंत्रण हो जाएगा।
0: जी तो मांगीलाल धाकड़ जी, आपने गुना मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया और मिर्ची के पेड़ में जो कुकड़ा की समस्या है उसके बारे में समस्या आपने बताई, डॉक्टर साहब ने आपकी समस्या का निदान भी बताया। लगातार हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, देखिए हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी
4: हेलो
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें हमें।
4: गुड्डू चौबे बोल रहा, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
0: चौबे जी बताएं क्या समस्या है।
4: समस्या नहीं, हमारे जो प्रश्न है तो महोदय जी से।
0: जी
4: यह सोयाबीन अपन बीज उपचार करने तो देसी नुस्खा माने जैविक वारो बताएं।
0: बिल्कुल बता रहे हैं।
2: हाँ देखिए, सोयाबीन में अगर जैविक उपचार करना है तो एक जैविक फफूंदनाशी आता है ट्राइकोडर्मा, है ना। तो किसी भी आप जैसे आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है, सागर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके वैज्ञानिक से संपर्क स्थापित करके आप ट्राइकोडर्मा नामक आप इसमें जो जैविक फफूंदनाशी होता है उससे आप उपचार करें। और इसके अलावा आप उसमें इसके अलावा गोमूत्र से भी उपचार कर सकते हैं। तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके अच्छा ट्राइकोडर्मा प्राप्त कर लें और उससे अपनी सोयाबीन को उपचारित करके लगाएं।
0: तो चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, टेलीफोन लगाया आपने और अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: हेलो।
0: हाँ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं।
5: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमनौरा जिला छतरपुर जिबुल्ला हुकम चंद यादव।
0: यादव जी बताएं क्या समस्या है।
5: जी सर, मूंग बोवी है तो उसके पत्ता गुड़िया रहे हैं और

0: ਭਿੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ
1: अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब बताओ।
2: देखिए मूंग में तो मूंग में आपको ध्यान रखना है कि मूंग में जो अभी पत्तियां पीली पड़ने की थोड़ा सा मुड़ने की तो इसमें वायरस जनित रोग लगने की संभावना होती है जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो उसमें अपन को क्या करना है उसमें आप अगर वैसी ज़्यादा समस्या आ रही है तो नीम के तेल का छिड़काव कर दें 5 ml 1 liter पानी के मान से आप इसमें छिड़काव कर दें 15 liter पंप है 75 ml उसमें छिड़काव कर दें। और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा नियंत्रण नहीं हो रहा तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोथॉक्सान नाम की दवा आती है रासायनिक उपचार के लिए उसको आप उसका उपचार कर उसका छिड़काव कर देंगे तो वो ये समस्या जो आ रही है वो नहीं आएगी इस समय।
1: तो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने टेलीफोन लगाया। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। शुभ नाम बताएं अपना।
3: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते आप शुभ नाम बताएं अपना।
3: बिल्कुल मैं गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
1: नामदेव जी आप सवाल करें
3: जी। सर जी मेरा ये सवाल है कि बैगन लगे हैं मेरे छोटे छोटे होते हैं जो देसी बैगन वो लगाए मैंने उसमें क्या हो रहा है कि अभी उसमें इल्ली का प्रकोप था 15 दिन पहले तो मैंने कोई भी बाजार से दवाई ना लेके हुई मैंने क्या किया नीम का तेल का छिड़काव कर दिया था तो राहत मिल गई थी। अब 2-3 दिन से फिर से इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो नीम का तेल का फिर से उपयोग करूं या फिर उसमें कोई दवाई डालूं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मिर्ची में अभी मिर्ची आने को तैयार थी लेकिन अभी 2-8-10 दिन पहले बारिश के खातिर वो मिर्ची का फूल झड़ गया तो अब उसमें मिर्ची कौन सी ऐसी दवाई डालूं जिससे मिर्ची का प्रकोप झड़ने का फिर ना हो सके।
2: देखिए इस पे ना पहले बैगन की बात करते हैं। नीम का तेल बिल्कुल सही रहता है ना। नीम का तेल का आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नीम के तेल से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसमें एमामेक्टिन बेंजोइट नाम का रासायनिक दवा आती है 1 ml मात्रा 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। मिर्ची जहां तक बात है फूल झड़ने की है तो नमी को थोड़ा सा बना के रखिएगा। तापमान बढ़ने से फूल झड़ने की संभावना होती है। कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन की कमी होती है तो उससे भी फूल झड़ने की समस्या आती है तो उसके लिए आप बोरेक्स जो रहता है 1.5 से 2 gram 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें सूक्ष्म आपने इसमें पोषक तत्व नहीं दिए हैं तो 19-19-19 जो आता है घुलनशील उर्वरक उसका भी 5 gram 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। संभवतः तापमान अधिक होने के कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है।
1: तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले किसान श्रोता का हम लेते हैं टेलीफोन, सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले में आपका स्वागत करता हूँ।
1: वैशाली जिला बिहार। डॉक्टर साहब आप अपना नाम पुनः दोहराएंगे।
4: डॉक्टर सितारे हूँ।
1: जी जी जी अब आप सवाल करें डॉक्टर साहब से।
4: जी भिंडी बोया था और कद्दू भी।
1: हाँ
4: फसल तो बहुत बढ़िया फला पानी बरसने के बाद उसमें कीड़ा जैसा लग गया है कीड़ा भागता नहीं है।
1: अच्छा
2: जी जी वो क्या होता है कद्दू हुआ कद्दू में क्या होता है कि फल मक्की का प्रकोप हो जाता है और फल मक्की का जो प्रकोप होता है वो पौधे के जो फल होते हैं उसमें छेद करके अंडा दे देती है और फल अंदर अंदर खराब होके गिर जाता है जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो फल मक्की के नियंत्रण के लिए आप सबसे अच्छा होता है नीम का तेल का प्रयोग करें या फल मक्की के प्रपंच आते हैं बाजार में उनका आप 1 acre में 5-6 प्रपंच जगह जगह पर आप लटका देंगे तो फल मक्खी पर जो नुकसान हो रहा है फलों पे वो नुकसान नहीं होगा। फल सड़ेंगे नहीं और जो सड़े हुए फल है या नुकसान ग्रसित फल है उनको आप निकाल कर अलग कर दीजिए इस चीज का ध्यान रखिए तो उससे थोड़ा सा ये समस्या है वो कम हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने टेलीफोन लगाया वैशाली नगर बिहार से और लगातार हमारे पास किसान भाइयों के टेलीफोन आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर किसान की जो समस्या है उसका निवारण करें। एक टेलीफोन हम लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसी कारण से आवाज़ नहीं आई हम तक नहीं पहुंच पाई। खैर डॉक्टर साहब लगा

0: लगातार जो हमारे किसान भाई इस समय जो है सामूहिक तौर पर जो कार्यों की जानकारी ले रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि हमारे जो सुन रहे हैं दूसरे किसान भाई, उनको भी लाभ मिल रहा है। अब देखिए हमें संकेत मिल रहा है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आप शुभ नाम और स्थान का नाम हमें बता दें।
1: जी मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया वाली, तहसील बेगौन, जिला रायसेन से बोल रहा सर।
0: चढ़ार साहब क्या सवाल है आज का?
1: सर ये बोल रहा है,
0: हाँ
1: इस समय सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में बनी जा सकता भाई?
0: बता रहा है।
2: देखिए सोयाबीन की तो बहुत सारी किस्में हैं आपके क्षेत्र में, जैसे आपने बेगमगंज की बात करी, तो आप जो वैसे तो आपके इधर कितने समय की आपको फसल बोनी है, जैसे कम समय की 93.05 होती है, थोड़ा सा ज़्यादा समय की और थोड़ी ऊंची बढ़ने वाली 2172 JS 2172 किस्में होती हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है ना, आप कितनी लंबी फसल या कितने समय की फसल बोना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अच्छा होगा कि जो आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है नकतरा में, वहाँ के वैज्ञानिकों से आप चर्चा कर लें और उनके पास कौन सा आपके क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध है उस आधार पर अभी से बीज ले लें, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी भूमि के हिसाब से, और फिर आप अपने क्षेत्र में वो किस्म को लगा लें।
0: तो चढ़ार साहब आपकी समस्या का निदान हो चुका है, अगले किसान भाई का टेलीफोन। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
1: जी सर, मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया, बेगौन, तहसील रायसेन से बोल रहा है सर, पूरी बात नहीं हो पाई थी।
0: अच्छा अच्छा हाँ, चलिए
2: अभी हमने आपको जो किस्में बताई हैं और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है नकतरा में आपके बेगमगंज के पास, वहाँ पर आप वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो सोयाबीन की फसल देखते हैं, आप उनसे संपर्क कर लें और जो बीज की उपलब्धता आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में है, उनके द्वारा जो अनुशंसित किस्में हैं वो आप लगाएं।
0: जी तो चढ़ार साहब अब तो आपकी समस्या का समाधान मिल चुका है आपको, और अगले किसान भाई का टेलीफोन हम लें, इससे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि इस समय जो है फसलों में जो है कुछ कीट व्याधियाँ देखने को मिल रही है।
2: हाँ, इस समय क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है तो कीट व्याधियाँ बहुत आती हैं, जैसे कि अपन ने अभी चर्चा के दौरान भी देखा है, जो खरबूज, तरबूज और करेला, लौकी, गिलकी लगी, इसमें फल मक्खी का प्रकोप आता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को जहाँ पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं वहाँ पर फल मक्खी का प्रपंच लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे भिंडी जैसी फसल है, इस समय भिंडी बाज़ार में आ रही है और किसान भाइयों के इधर बड़े पैमाने पर लगी है, वहाँ पर उसमें क्या होता है, लाल मकड़ी का प्रकोप इस समय दिखाई देता है, जिससे पत्तों पे नुकसान होता है, फल पे नुकसान होता है, तो उसके लिए आप अच्छा कोई कीटनाशक हुआ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एवामेक्टिन आता है उसका आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फफूंदी रोग भी इस समय दिखाई देता है, उसके लिए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि सामायिक में अगर फलों की अगर बात करते हैं तो फलों में इस समय आम बाजार में आ रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसकी सही समय पे तुड़ाई करके बढ़िया उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके मार्केट में बेचें, जिससे रेट अच्छा मिले,
0: रेट अच्छा मिले जी, और जी, ये करना भी चाहिए। एक किसान भाई का हम टेलीफोन ले
2: जी जी जी
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं अपना। हाँ जी,
3: मैं गोपाल जाटव, जिला शिवपुर
0: जी,
3: शिवपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: शिवपुर मध्य प्रदेश से जी, सवाल करें।
3: सोयाबीन बोना चाहता हूँ खेत में, तो कौन सी किस्म का सोयाबीन बोए?
2: देखिए सोयाबीन की बहुत सारी किस्में होती हैं, है ना, ये आपके क्षेत्र के आधार पर निर्भर करती हैं, सारी किस्में हर क्षेत्र में नहीं चलती हैं, तो आप अपनी भूमि के हिसाब से अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके आपके क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त किस्में हैं वो किस्मों को आप बोए, और ध्यान रखें कि जो भी किस्म आप लें वो मंडी से आपको नहीं लेना है, आपको कृषि विभाग से लेना है या कृषि विज्ञान केंद्र से ही आपको किस्में लें, या फिर बीज निगम से भी आप किस्में ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपको एक किस्म रहती है, तो सर्टिफाइड बीज जो होता है, प्रमाणित बीज को ही लेके और बीज उपचार करके ही आप किस्मों को बोए।
0: जी तो जाटव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया, डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का उत्तर दिया, लगातार हमारे किसान भाई जो है बने हुए हैं, टेलीफोन कॉल लगा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और इसकी वजह ये भी है डॉक्टर साहब कि

0: आज का जो विषय हमने रखा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा है। आज का विषय है जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामिक कार्य। और श्रोताओं, हम आपको बता दें, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। पुनः एक किसान भाई का टेलीफोन आ रहा है, हम चलिए उनका टेलीफोन कॉल। जी नमस्कार, हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग गया, शुभ नाम बताए।
1: डॉक्टर साहब से हम ज्यादा जानकारी ले चाह रहे थे, अभी पौधे लगाने हैं जी, जैसे मिर्ची है, भट्टा है, टमाटर है, तनिक अभी समय है कि नहीं है लगा अभी?
0: पहले आप नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा हमें, आप अपना शुभ नाम।
1: करकट जिला सागर से।
0: जी बिल्कुल,
2: देखिए अहिरवार जी, अभी आप इसको लगा सकते हैं। अभी पहले तो आपको है ना नर्सरी, अभी तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 10-15 दिन को आप रुक जाइए। और खेत में ये समय होता है कि जब अपन खेत को अच्छे से तैयार कर ले और जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि को खेत में आप इस समय मिला के ले लें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर पे आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं, विशेषकर आप टमाटर इस समय लगा सकते हैं, है ना, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं। इसकी जो आपके क्षेत्र में जो किस्में प्रचलित हैं या जिसका बाजार भाव अच्छा मिलता है, उस किस्मों को आप, उसके बीज आप बो दीजिए नर्सरीज में। और लगभग जैसे ही पानी शुरू होता है 15 जून के आसपास, उसको खेत में लगा दीजिए। तो अभी खेत की तैयारी कर लीजिए, गोबर की खाद मिला लीजिए, बीज ले लीजिए और अच्छी तरह से नर्सरी बना के रोपा डालने की तैयारी आप कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा 10-15 दिन, और जहाँ पर आप नर्सरी बनाएं वहाँ पर पानी ना बैठता हो, ये ध्यान रखना है। और धूप से बचाने के लिए ऊपर शेड या थोड़ी छाया अवश्य कर लें आप।
0: तो अहिरवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, आप स्थान भी बता दें हमें, अपना नाम बताकर।
3: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या समस्या है।
3: आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है।
3: बिल्कुल सर, हम ये कह रहे थे हमारी मूंग लगी हुई थी।
0: हाँ हाँ हाँ,
3: तो उसमें इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, वो पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं मूंग के।
0: अच्छा, मूंग में इल्ली लगी हुई है और पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं।
3: हाँ, पत्ते भी पीले पीले से दिख रहे हैं।
0: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको
2: देखिए
0: बता रहे हैं।
2: पत्ते पीले होने
3: के, डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, देखिए पत्ते जो पीले हो रहे हैं और जगह जगह बीच में कहीं कहीं पर इस तरह से पीले हो रहे हैं, तो वो तो वायरस जनित रोग होगा। और वो फैलता है जो रस चूसक कीट होता है, विशेषकर जो सफेद मक्खी होती है वो रोग को फैलाती है। तो आपको नियंत्रण करना है, खेत में जाके निरीक्षण करिए, पौधे के पास बैठिए, थोड़ा सा हाथ से हिलाइए, अगर मक्खी उड़ रही है, पत्तियों के पीछे रहती है, तो आप समझ लीजिए कि सफेद मक्खी वो नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए आपको रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रेट थायोमिथोक्सोन नाम की दवाई बाजार में मिलती है, उनका आप छिड़काव कर दीजिए, है ना, इस समय कर दीजिए छिड़काव, जिससे इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो पत्ता पीला, ऊपर से पीला पड़ रहा है, तो उस पौधे को भी निकाल देंगे तो आगे चल के समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, जहाँ तक आपने इल्ली की बात करी है, तो आप अच्छा रहेगा क्योंकि ये मूंग कम समय की होती है, और इल्ली के लिए आप नीम के तेल का अगर स्प्रे करते हैं, है ना, उसका स्प्रे सबसे अच्छा रहता है। और इसके लिए 75 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए, तो इससे सफ़ेद मक्खी पे भी कुछ हद तक नियंत्रण होगा और साथ में जो रहेगा आपकी इल्ली की समस्या पर भी नियंत्रण हो जाएगा।
0: तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं, सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार, आप शुभ नाम बताएं।
4: नमस्ते सर जी,
0: शुभ नाम बताएं। और सबसे पहले तो आप अपने रेडियो या जिससे भी आप सुन रहे हैं उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए।
4: हाँ सर जी, कर दिया जी, सब फोन से सुन रहे थे सर।
0: जी शुभ नाम बताएं अपना। हाँ शुभ नाम बता दें अपना।
4: हाँ सर, परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर, कन्या मलाजखंड बालाघाट जिले से।
0: जी बालाघाट जिले से, बताएं क्या समस्या।
4: सर जी, बरबट्टी लगाए सर अभी बाड़ी में।
0: हाँ,
4: तो उसमें सर मैनी जैसे लक्षण है सर, क्या करना चाहिए सर?
0: अच्छा, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे क्या समस्या है। मतलब
4: सर वो मैनी जैसा जो रोग होता है ना सर, वो काला काला रहता है सर, जीव वो नजर आ रहे हैं सर जी।
0: तो पत्तियों पर आ रहा है, फलियों पर?
4: फलियों पर सर जी।
0: अच्छा
2: अच्छा, देखिए अगर हम समझ पा रहे हैं, तो अगर वो जो आप देख रहे हैं काला काला, वो हो सकता है कि एफिड का भी अटैक हो, पूरी पत्तियां उसमें काली हो जाती हैं, पूरे जो तने रहते हैं उस पर

0: काले छोटे छोटे से बारीक बारीक कीट हो जाते हैं, अगर
1: हाँ जी
0: वो
1: भैया
0: है ना, अगर उस
1: जी
0: तरह का आपको दिख रहा है, पूरी जो शाखाएं होती हैं उस पे पूरा काला काला सा हो जाता है और आगे चल के वो सूखने लगती हैं शाखाएं जो होती हैं, और फलन उसमें कम आता है, तो वो रस चूसक कीट के कारण होता है ना। तो
1: जी सर,
0: उसको आप है ना उसके लिए कोई दवाई का उपयोग कर लीजिए उस समय इसमें, है ना, कोई भी अच्छा नीम का तेल यूज़ कर दीजिए या इमीडा क्लोप्रेट जो मिलती है बाजार में। इल्ली वाली दवाई मत डालिएगा, रस चूसने वाली जो दवाई होती है उसका आप प्रयोग करिए, एक आध छिड़काव में ही वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी, है ना।
2: तो परशुराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और इतनी बढ़िया जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने आपको दी, और एक किसान भाई का टेलीफोन हम और ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील श्यामपुर से।
0: नमस्कार नमस्कार
2: जी दांगी जी, आप सवाल करें।
3: सर मेरा ये सवाल है सर, हमने मूंग लगाई है तो सर उसमें ऐसी शिकायत आई है कि सर करीबन 20 फीट लंबी और दो चार मानो 20 फीट लंबाई में, तो सर उतने पेड़ ऑटोमेटिक सूख गए और पूरी फसल ठीक है, मालूम नहीं क्या कारण हुआ।
0: देखिए वहाँ पर है ना कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए जड़ में कुछ प्रॉब्लम आई होगी ज़मीन के उस हिस्से में जो सूखने वाला या विल्ट है या उकता की समस्या वहाँ पर हो सकती है ना, ये तो वहाँ पर देखने पे स्पष्ट होगा। अगर पौधे के सूखने की समस्या है तो उसमें अभी आप इस समय जो उगता होता है या विल्ट होता है उसका निवारण नहीं होता है, वो तो ये है कि आपको इसको फसल को निकाल के खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और कहीं कहीं पर जब पानी की कमी होती है और ज़मीन हल्की होती है वहाँ पर दीमक के कारण भी ये समस्या आ जाती है, लेकिन इस समय खड़ी फसल में उसको कोई दवाई देने से उसको अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली बार खेत को अच्छे से तैयार करें, अब तो गर्मियों की जुताई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी फसल लगी है, लेकिन इस फसल को निकालने के बाद खेत की अच्छी से हकाई जुताई उसमें कर लेना, है ना। और जो भी आपके अगर उधर पर कोई कृषि से संबंधित कृषि विभाग का है तो उसको देख लीजिए, जड़ को वो पौधे को निकाल के देख लीजिए, जड़ उसकी काली हो रही सूख रही है तो उससे समझ में आएगा कि दीमक के कारण है या उकता के कारण है या और कोई कारण है उसमें।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी, आपने टेलीफोन लगाया और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और लगातार जो है टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, एक किसान भाई का और टेलीफोन ले सकते हैं। जी शुभ नाम बताएं अपना।
4: जी नमस्ते सर।
2: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना और स्थान
4: हाँ,
2: बताएं।
4: ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: जी आप सवाल करें।
4: सवाल ये चीज सर, अभी उड़द की खेती कर रहे हैं हम लोग।
2: हाँ
4: तो बढ़िया सर उड़द, तो अभी जैसे पिछले बार कॉल किया बड़े सेशन दिए थे उस हिसाब से भी खेती कर रहा हूँ।
2: जी
4: तो अभी सर फूल आ गए, आ रहे हैं फूल उड़द में।
2: अच्छा
4: तो हाँ, तो उसमें अच्छे फूलों की बढ़वार के लिए कौन सा दवाई इस्तेमाल करें, क्या सावधानी रखें, उस संबंध में जानकारी चाहिए थी सर।
2: बिल्कुल बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
0: देखिए फूल जब आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, यानी आपको नमी खेत में बनाए रखे और उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कोई कीड़े जो है रस चूसक कीट का उसमें प्रकोप ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और इस समय अगर कोई बीमारी नहीं है और फूल सही हैं तो इसमें कोई कीटनाशक का इस समय प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। अगर संभव हो इसकी बढ़वार के लिए तो आप 0-52-34 जिसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों होता है उसका लगभग 5 ग्राम पाउडर के रूप में आता है पोषक तत्व होता है, उसका आप छिड़काव करेंगे तो फूल एवं फलन जो है आगे चल के लगने वाला है वो अच्छा होगा। और अगर अच्छी फसल है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 0-52-34 आप इसमें स्प्रे कर दें तो और अच्छी आपकी फसल और उत्पादन अच्छा हो जाएगा।
2: बिल्कुल, तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और अभी भी हमारे कई किसान श्रोता लाइन पर है लेकिन वक्त की पाबंदी होती है डॉक्टर साहब, इसलिए हमें कार्यक्रम यहीं पर जो है विराम देना पड़ रहा है। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी आपने बढ़िया हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, उनकी हर समस्या का निदान किया, आप यहाँ पर आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, विषय हमने रखा था जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विजय अग्रवाल जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, प्रसारण सहयोगी दुर्गेश दुबे, उद्घोषक प्रेम शरण खेमरिया। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और रेणु टोप्पो ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: की कई चंद गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी भोपाल से समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। बस थोड़ा सा इंतजार।
1: कार्यक्रम डगर विकास की, विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं, वार्ड मुरीर के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए, जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे

0: शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक है, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आएं। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आएं, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर PMS पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका NPA नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है

0: संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
1: जी क्या नाम है आपका?
2: हेमलता सूरवंशी।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
2: 2024 पे।
1: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सेंक्शन हुआ था?
2: 10,000 का।
1: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
2: जनरल स्टोर पे।
1: तो उससे फायदा है आपको?
2: जी।
1: क्या लाभ मिला आपको उससे?
2: उससे भी हमारी छोटी दुकान थी, उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाती जा रही, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। पीएम स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार। जी
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा सदन कुमार मालवी।
1: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
3: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
1: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
3: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इससे। मैं हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया, तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से, कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना, योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
0: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना कोलेन्द्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

FM 101.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण। रात्रि की 8:30 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रूना लैला के गाए चंद गैर फिल्मी गीत।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी बालाघाट से कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। इसके साथ ही हमारा आज का पॉप म्यूजिक का ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना रूना लैला के गाए चंद गैर फिल्मी गीत। FM 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर

0: सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न

0: क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा

0: कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है।

0: नवाचारों के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
0: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
1: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative health care with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
0: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
1: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
1: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

देने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने

समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: सिया मिलन को जाना,

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आए। आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सोख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की गिरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

सियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं हैं, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल, ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये न

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल। यादें जिनमें दर्द भी है, तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छाया गीत में थे तलत महमूद के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: तेरी आँख के आँसू पी जाऊं।
0: फिल्म जहां आरा।
1: शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम।
0: फिल्म फुटपाथ।
1: मेरे दिल कहीं और चल।
0: फिल्म दाग।

फिल्म वली आजम। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

103.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया के गीत से। हम आपको बता दें दोस्तों कि आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए चंद सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया के गीत से। आवाज़ किशोर कुमार की बेशक, संगीत राहुल देव बर्मन का और गीत है मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में सुनते हैं कल आज और कल। इस फिल्म में शंकर जयकृष्णन का संगीत और बोल है हसरत जयपुरी के, आवाज किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी। इस फिल्म में आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, आवाज किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए सुनते हैं राजा जानी फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, बोल आनंद बख्शी के, आवाज किशोर कुमार की।

आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में सुनते हैं शर्मिली फिल्म में एसडी बर्मन का संगीत, बोल नीरज के, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अनुरोध फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की बोल, आवाज़ एक बार फिर किशोर कुमार की।

दोस्तों, फिल्म अनुरोध में किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट

0: का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।